0: बहुत फर्क है। देखो इतना टेक्नोलॉजी एडवांस है, सब कुछ है।
1: जी
0: एक तरह नाल देखा जाए तो अगर तुसे सोशल मीडिया से एक्टिव हो तो
1: जी
0: तुहाडा इस तरह टाइम बचता है कि तुहानू जाके नहीं मिलना पैंदा,
1: जी
0: तुसी घरे ही सारिया नू हैलो हाय एक बारी सवेरे करके निपट जाते हो।
1: वो एक केड़ा वादा
0: हाँ
1: है
0: वो इहदा वादा है जे इसनू पॉजिटिवली लो।
1: जी
0: लेकिन अगर तुसी पिंग होई नाल दी नाल फोन चुकिया, सारे काम छड़ के तुसी मैसेज देखिया फटाफट, नहीं। एक चीज़ का टाइम होना चाहिए कि ये टाइम है मेरा, इस टाइम जिदा बच्चे स्कूल गए है या ट्यूशन गए है,
1: बिल्कुल
0: ये मैं हूँ घर के काम तो फ्री है, ये एक घंटा मैं इतने लगा सकती हूँ। प्रायोरिटी देनी पड़ेगी तुहानू, तुसी सैट करना है कि तुहाडे लिए प्रायोरिटी की है। जे तुहाडे लिए प्रायोरिटी सोशलाइज करना है, मार्केट जाना है, सहेलियां नू मिलना है, तो फिर तुसी बच्चियों तो ये एक्सपैक्ट ना करो कि उन्होंने पढ़ाई और जो तुसी कहने वो प्रायोरिटी हो, क्योंकि तुसी अपने
1: बिल्कुल
0: बच्चों के रोल मॉडल हो। बच्चा जो देखता वही करता है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
0: जे
1: बिल्कुल
0: तुहाडे लिए हमेशा तुसी उन्हों ये कहने हो नहीं इत्थे तो जाना ही पैना है, नहीं हुणे आए हैं हुण तुसी इन्हां नूं अटेंड करो, वो
1: करना
0: यही सीखेगा कि पढ़ाई पिछे पाई जा सकती है।
1: जी, बिल्कुल
0: जे
1: बिल्कुल
0: तुसी
1: बिल्कुल
0: बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस उन्हां दी पढ़ाई लिए छड़ दो, वो सीखेगा कि पढ़ाई ही प्रायोरिटी है।
1: वो स्किपिंग करेगा नहीं थे,
0: हाँ
1: वो कहेगा छोटो पर
0: तुसी
1: ये को लोड़
0: सोचोगे कि
1: नहीं।
0: रिश्तेदार आए अज तू छुट्टी ले लै,
1: हाँ जी हाँ बिल्कुल
0: वो यही सीख जाएगा कि
1: हाँ
0: रिश्तेदारां दे आने ते छुट्टी ले दी है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो पूरी जिंदगी उहदा फिर एक पार्ट एंड पार्सल बन
0: हाँ
1: जाएगा कि
0: जी
1: वो इंपॉर्टेंट काम छड्ड भी सकता
0: हाँ
1: है,
0: जी
1: और मैनू लगता नहीं कि वो करियर कोई ग्रो करेगा इहो जिहा
0: बिल्कुल
1: बच्चा जदों मन च गल आ गई है।
0: बिल्कुल
1: तो आपां जिहड़ी गल करते सी कि व्हाट्सएप वाली, तो आपां बच्चे नू टीवी लैके देता पर टाइम नहीं दिता,
0: हाँ
1: टीवी
0: जी
1: वर्सेस टाइम का एक मुद्दा आंदा है,
0: हाँ
1: यही
0: जी
1: आपां हुणे गल भी कीती है।
0: हाँ जी
1: ये जो आप होर देखिए कि जो 4 मैंबर घर च बैठे आ, पेरेंट्स भी आपस में एक दूजे को भी वो व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं, तो वो भी वो तो बिल्कुल ही इग्नोर हो जाता है बच्चा
0: बिल्कुल
1: जरा,
0: होंगे इग्नोर, बिल्कुल
1: ये तो
0: होंगे।
1: कैसे बचा जा सकता है, कितनी गंभीर गल है।
0: ये बहुत गंभीर गल है। जे तुसी चाहते हो कि बच्चे साडे नाल कनेक्टेड रहन और वो ये फील भी करन, सिर्फ उपरों उपरों कनेक्टेड नहीं है, तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बच्चों नाल बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: क्वालिटी टाइम स्पेंड करन दा मतलब हैगा ये नहीं हैगा कि वो जो भी कर रहा है उस तो तुहाडी नज़र होनी चाहिए है। सपोज वो होमवर्क ही कर रहा है,
1: जी
0: तुसी ओदा कोई सवाल अड़ गया, तुसी उसका
1: बिल्कुल
0: सवाल जड़ा हैगा वो करता तो की होएगा, शायद अगला फेर ना कर सके। तुसी चीज़ इस तरह करनी है कि वो तरीका सीखे और फिर
1: ये
0: वो नाल दे
1: हाँ
0: बाकी भी कर सके,
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक
1: बिल्कुल,
0: है।
1: फंडा फंडे क्लियर होने
0: फंड
1: चाहिए।
0: एको तुसी कहोगे मैं तो वो होमवर्क ही करता, ये भी क्वालिटी टाइम दिता, उन्हें
1: बिल्कुल
0: वो लर्निंग नहीं हुई।
1: बिल्कुल, सगो खोलिया
0: हाँ वो उन्हें टीचर ने देखना सीखा कि ये बच्चा कितना सीख रहा है, होमवर्क
1: कुछ
0: उन्हें टीचर ले सी एक एक स्टैंडर्ड एक पैरामीटर, तुसी वो खराब करता,
1: बिल्कुल
0: टीचर ने
1: बिल्कुल
0: भी वो प्रोग्रेस नहीं नोट की। तुसी
1: बिल्कुल
0: सोच रहे हो कि मैं अपने बच्चे नू टाइम दिने हैं, मैं इन्हां नू होमवर्क कराना है,
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: बच्चे दी भी लर्निंग नहीं हुई,
1: बिल्कुल,
0: दिस इज नॉट क्वालिटी टाइम।
1: वो तो बहुत बड़ा लॉस
0: हाँ
1: उन्होंने एक तरह से
0: जी
1: कर दिता है।
0: हाँ जी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक
1: जी
0: है। और बाकी फिर वही है, जिन्ना ज़्यादा तुसी टीवी देखते हो, व्हाट्सएप करते हो, टेक्नोलॉजी दे नाल जुड़े रहते हो, बच्चों से घट टाइम, टाइम तो उन्ना ही है 24 घंटे, चाहे उन्होंने इधर
1: बिल्कुल
0: लगा लो चाहे उन्होंने उधर लगा,
1: बिल्कुल हर चीज
0: प्रायोरिटीज
1: में
0: सेट करनियां पैनगियां।
1: वो तो जरूरी है जी।
0: हाँ जी
1: ते केड़ियां जिहड़ियां होर भी जिहड़ियां गल्लां ने आपां जे ध्यान देना होवे उहनां दे उत्ते, एक ते टाइम, क्वालिटी टाइम,
0: हाँ जी
1: क्वालिटी टाइम दा होना ते मैनूं लगदा सब तो पहली शर्त ही होनी
0: सब तो पहली
1: चाहीदी
0: शर्त है।
1: है। इहदे नाल उहनां दा जिहड़ा डाइट दा जां
0: हाँ
1: बच्चिआं दा,
0: जी
1: उहनां नूं खाण पीण तों, उहनां दी
0: बिल्कुल
1: बैड कंपनी च पै गया जी
0: हाँ
1: बच्चा,
0: जी
1: ये कैसे होता है, बैड कंपनी च चला गया बच्चा तो फिर वो वापस कैसे आएगा।
0: पहली गल तो बैड कंपनी च बच्चा उदों जाता है जदों उन्हों पता हैगा कि मेरे ऊपर मॉनिटरिंग नहीं है।
1: जी, ठीक है
0: अगर एक बच्चा डेली आके अपना रूटीन तुहाडे नाल डिस्कस करता है तो उन्होंने छोटियां छोटियां चीज़ों तो पता चल जाता है कि की हो रहा है दी लाइफ च,
1: जी, बिल्कुल
0: तुसी उन्हों बहुत इनिशियल स्टेजेस ते रोक सकते हो,
1: जी,
0: ठीक है। बैड कंपनी च फिर भी अगर वो चला गया बाय चांस, पर तुहाडे नाल जुड़ाव है, गलबात करता है, तुसी अपनियां गल्लां बातां दे नाल अपनी कन्विंसिंग पावर दे नाल उन्हों मोड़ लिया सकते हो। पर अगर
1: बिल्कुल
0: तुहाडे विच कनेक्ट नहीं है
1: हाँ
0: ना वो गल करेगा ना तुहानू पता चलेगा, कंपनी बैड है होंदी जाएगी, आदतां
1: बिल्कुल,
0: विगड़ जाएंगियां, वापस लियाना मुश्किल है।
1: वो तो एक तरह नाल कह लो उन्होंने आप गवा लिया,
0: हाँ जी
1: ਉਹ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,
0: ਬਿਲਕੁਲ।
1: ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ

गीत को स्वामी जी दे इस गीत तो बाद एक गीत असी जोगिंदर पाल मल जी तो होर सुनना चाहांगे जेड़ा के रंजीत कौर साबी जी का ही लिखा होया है ते ए साडे अज दे प्रोग्राम गौंदी शाम दा आखरी गीत होएगा ते इस जेड़ा हुण गीत लेके हाजिर हो रहे ने जोगिंदर पाल मल जी ए है मेला चार दिनां दा यानी कि जिंदगानी जिहड़ी है सिर्फ चार दिनां दा मेला है इस तों बाद ए जिंदगानी नहीं रहनी इस जिंदगानी नूं जिहड़ा चार दिनां दा मेला किवें बतीत करना चाहिदा आ इस गल्लां नूं लैके जिहड़ा आ रणजीत कौर साबी जी ने लिखिया है ते आवाज दित्ती आ जोगिंदर पाल मल जी ने जोगिंदर पाल मल जी तुहाडा एक बार फिर दुआबा रेडियो दे मंच ते निघा स्वागत है गौंदी शाम दे स्रोते थोड़ी बेसब्री नाल अड़ीक कर रहे ने आओ ते उन्हां दा जिहड़ा आ मन परचावा करो जोगिंदर पाल मल जी

0: कोई लड़के लिए विशेष कोर्स ने या यही कोर्स उन्हां लई हैगे ने?
1: नहीं, लड़कियां दे लिए विशेष कोर्स तां आपां ये कह सकते हैं कि जिवें इत्थे सीविंग दा हो गया, सीविंग कटिंग दे कोर्सेज हो जांदे ने
0: अच्छा जी,
1: काफी। हाँ जी, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड दे विच काफी जांदियां ने कुड़ियां,
0: अच्छा
1: ते
0: जी,
1: एक स्टेनोग्राफी इंग्लिश जिहड़ा ट्रेड है उहदे विच इह वी इक कॉमन कोर्स असीं कह सकदे हैं
0: हाँ
1: कि
0: जी,
1: कुड़ियां कर सकदियां ने, क्योंकि इहदे विच काफी बच्चे जांदे हैं, गर्ल्स भी ज्यादा मात्रा विच जांदियां ने।
0: हाँ
1: ठीक
0: जी,
1: है, बाकी जिहड़े कोई इदां दा बैरियर नहीं है, जिदां मोटर मैकेनिक हो गया, इदां दे कोर्सेज ज्यादातर मेल्स ज्वाइन करदे हैं, बॉयज ज्वाइन करदे हैं।
0: अच्छा जी,
1: बट जिदां सीविंग कटिंग हो गया या फिर अपना स्टेनोग्राफी इंग्लिश हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन डिजाइनिंग हो गया, नेटवर्क टेक्नीशियन हो गया, ठीक है,
0: अच्छा जी,
1: इदां दे काम हैगे हैं जिहड़े कुड़ियां भी अप्लाई कर सकदियां ने कोर्स ट्रेड, या फिर इलेक्ट्रिशियन दा भी कुड़ियां काफी करदियां ने।
0: काफी
1: तां
0: वधिया, कुड़ियां लई खेतर वधिया हैगा।
1: हां जी, हां जी, बिल्कुल।
0: होर कोई गल जिहड़ी तुसीं दसणी चाहुंदे हो इस खेतर बारे?
1: इस खेत्र के विच ये है कि देखो, जिदा मैं तुहानू पहला दस चुकी हाँ कि जेडे बच्चे हायर एजुकेशन च जाना चाहते हैं, देखो एक चीज का जरूरी तौर ते है कि पहला डिसाइड कर लेना चाहिए बच्चे नू कि मैं प्राइवेट सेक्टर च जाना है या फिर मैं गवर्नमेंट सेक्टर च जाना है, या
0: अच्छा
1: कि मैं
0: जी,
1: अपना खुद का रोजगार खुलना है, कुछ भी अपना
0: हाँ
1: स्वयं
0: जी,
1: रोजगार बनाना, कुछ भी अपना बिजनेस वगैरह करना है। फिर ओदी तैयारी उस अकॉर्डिंग होएगी।
0: अच्छा जी,
1: जिदा जे कोई बच्चा चाहता है कि मैं पब्लिक सेक्टर दे विच जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर च जाना है, तो उन्हें थ्रेटिकल अपना बड़ा रखना पड़ेगा, मजबूत रखना पड़ेगा नाल नाल, क्योंकि ओदे विच बच्चे नू टेस्ट देना पड़ेगा, वो टेस्ट कढ़ने पैणगे, ते नाल दी नाल उन्हें अप टू डेट रहना पड़ेगा भी कि टेस्ट आ रहे ने, उन्हां दी तैयारी नाल दी नाल करदे रहना पड़ेगा। 2 साल दे दौरान जदों ओहदा आईटीआई जद तक कोर्स कंप्लीट होगा, ओहदे नाल नाल ही उह बच्चा या तो चलो जेकर वो बच्चा अंडर एज है तो वो डिप्लोमा कर सकता है, अगर वो एज ओरी 18 तक हैगी है तो वो बच्चा फिर पीडब्ल्यूडीज दे अंडर या फिर कोई भी इदा गवर्नमेंट पीएसयूज दे अंडर निकले हुए टेस्ट ने जेडे वो अप्लाई कर सकता है, ओदी तैयारी नाल दी नाल करी जावे।
0: अच्छा जी,
1: बट जिवें आपां प्राइवेट सेक्टर दी गल करदे हां, जेकर बच्चे ने
0: हाँ जी,
1: प्राइवेट सेक्टर च आना है तो उन्हों बच्चे नू थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज दे विच तेज होना पौगा, प्लस ओदे कम्युनिकेशन स्किल्स जेड़े हैं बहुत मैटर करते हैं।
0: अच्छा एक मिनट, में ये दसो भी जेडे वोकेशनल जेडे कोर्स होंगे ने ते आईटीआई, इन्हां दोनों के खेत्र विच की फर्क हैगा?
1: वोकेशनल कोर्सेज जेड़े के स्कूल्स दे दौरान बच्चे ले लेंदे हैं, जिदा कटिंग सीविंग दे भी काफी होंदे हैं, या फिर इसे दे नाल मिलदे जुलदे काफी सारे हो जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन वेल्डर इलेक्ट्रिशियन वगैरह वाले भी आ जाते हैं। तां उहनां दा फायदा ये होंदा कि जेड़े बच्चे आईटीआई ज्वाइन करना चाहते हैं
0: हाँ
1: उन्हां
0: जी,
1: दे लिए ओह इक प्लेटफॉर्म इक बेस बन जाते हैं,
0: अच्छा जी,
1: उन्हां नूं उन्हां बारे पहले ही नॉलेज हो जाती है ना।
0: अच्छा जी,
1: ते जेड़े बच्चों ने मान लो आईटीआई या फिर उद्योगिक खेतर दे विच जाना नहीं है, या फिर
0: हाँ
1: उन्हां
0: जी,
1: ने अगे ग्रेजुएशन करनी है या फिर हायर स्टडीज दे विच कुछ भी होर करना है, तां इहो जे बच्चों दे लिए सिंपल अपना 10th तक या फिर 12th तक अपनी सिंपल स्टडी करने दे विच ही बेहतरी है उन्हां दी।
0: अच्छा जी,
1: हां जी,
0: मैडम साहबाना जी, तुसीं बहुत वधिया जानकारी साडे स्रोतों के नाल सांझी की, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।
1: धन्यवाद जी,
0: हाँ
1: थैंक
0: जी,
1: यू
0: स्रोतों का असीं धन्नवाद करते हैं जिन्होंने साडे प्रोग्राम नूं बड़े प्यार नाल सुनिया,
1: जी।
0: ते अगली बार फिर मिलांगे प्रोग्राम सिक्ख्या ते रुजगार दे विच। तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद। मैं सुखबीर जोगा अते दुआबा रेडिया वल्लों शुक्रिया जी।